ऐसी भगत बन आई मेरा मन ऐसी भगत बन आई मेरा मन ऐसी भगत बन आई मेरा मन ऐसी भगत बन आई वाह वाह वाह।

0: मेरा मन ऐसी भगत मन आई,
1: ऐसी भगत मन आई, मेरे मन ऐसी भगत मन आई।
0: कब को मेले पंच सात गायन, कब को राग तुन उठावे, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, तब लग मेरा मन राम गुण गावे, तब लग मेरा मन राम गुण गावे, तब लग मेरा मन राम गुण गावे, तब लग मेरा मन राम गुण गावे, तब लग मेरा
1: राम गुण गावे,
0: ओ राम गुण गावे, राम गुण गावे, राम गुण।

सत बन आई मेरा मन ऐसी पगल कब को नाचे पांव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाओ पसारत बिनव तिल लाग तब लग मेरा मन राम समारे।

0: जकरे सब कोए ता जय जकर सब कोए ओ ऐसी भगत बन आई मेरा मन ऐसी भगत बन आई
1: ऐसी भगत बन आई मन ऐसी भगत बन आई
0: हर बिन खिन पल रह ना सको
1: हर बिन खिन पल रह ना सको
0: हो हर बिन खिन पल

मेरा मन ऐसी भगत बन आ, मेरा मन ऐसी भगत बन आ, मेरा मन ऐसी भगत बन आ, मेरा मन ऐसी

मेरा गुण अब गुण नाम विचारो कोई माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखनहार दयाला नानक करके गोले सज्जन सचा पातशाह सिर शाहां दै शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सुकहु टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाई।

मानमुख कर्म कमावणे होमय अंध गुबार, गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा, सहजे जागे सहजे सोवे, गुरमुख ज्ञान देने उस्तत होवे।

0: सती सती संतोखी गावें वीर करारी
1: गावन पंडर पंडर की सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावें मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पयाली
1: गावन रत्न पाए तेरे अठ सब तीरथ नाले
0: गावें जोध महाबल सूरा गावें खानी चारी
1: गावें खंड मंडल वर पंडा कर

0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्मंग
0: दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता
0: सर्वंग देवंग सर्वंग पीवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले
1: प्रसाद
0: आद रूप नाद मूर्त जून पुरख पार
1: सर्व
0: बालक सर्व कालक सर्व कोपन काल
1: दर्विराजे अब दूत रूप प्रसाद।

0: निरोग स्वरूप मुक्त भूतम प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है
1: सदैव अंग स्वरूप है अपेधि अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदैव काम निर्वास स्वरूप है गाद अनूप है
1: ओंकार रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: इंद्रवादी गंजी गादी सुगुण सर्वभाग्य सर्वानुरागी
1: भक्त स्वरूप है छिज है अछूत है के नरकंड पर नाश है मृत्यु और प्रवास है
0: निरोक्त प्रभा सदैव अंग सदा भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है परजुक्त अनूप है चाचरी छंद
0: अंग नंग भी खाली खाए
1: अपर्म है

0: मितो
1: बसेंगे आत्म प्रभंग चलंग नांगंग मितो भंग
0: मन
1: प्रणाम गुणगान मंदा मर भर नर पर भंज।

0: सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे
1: परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

अष्टपदी मान की टेक बिरती सब जान दे मन को एक भगवान जिस कह दिया रह गाए बोरन तृष्णा लागे आए मारे राखे को आप मानु कै कृष्णा ही हाथ तिसका कंबूज सकोए तिसका नाम रखंड परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगड़ना लागे कोई उस्तत मन में कर निरंकार हर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पी उस रस वेला कर ला जियो नैनो पेट ठाकुर कर अंग सत्संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिठे पाव जपी हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़भागी तेजा जग माहे सदा सदार के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार उसे तनवंत गनी संसार मंत्र मुख बोलो हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की उस जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक ते निरंजन जाने आ गुरप्रसाद अपना आप सूझ तस्की जानो तृष्णा बूझ सात संघ हर हर जस कहत सर्वलोक त्योहर जन रहत अंदर कीर्तन केवल बखयान ग्रस्त मैं सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फसा पार ब्रह्म की जिस मन पूख नानक सह न लागे दुख जिस कहो हर प्रमंच ते आवै सो संत सुवेला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपने कृपा करे सो सेवको किस ते डरै जैसा सा तैसा दिष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सो दत्त सो दत्त सो दत्त सीजिया गुरप्रसाद तसा बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई असूल उन्हें किस जन्म ने किस मरे अपन चलता भी करै आवन जावन दृष्ट अंदिष्ट आगे कारी धारी सब सिष्ट आपे आप सगल में आप थाप थाप नासी नाई किश खंड धारण धारे ब्रह्मांड अलक पे पुरख प्रताप आप जपाई नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उदरतनवंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेव दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु कश्यप जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसन कृपा करे बड़भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम कर मान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सो पाए हो वैसो होए करने हर पछाणे सोए प्रभ का किया जनमीठ लगाना जैसा सा तैसा दिस्ताना जिसते उपजत समाए समाए सुख निदान बने आए आपको आप दीनों मान नानक प्रभ जन एक जान सलोक

बेल लाइया पूर्व लिखे का लिखे पाइया दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्या तू तो सच तार जोश कर सोई सुख मान पूला काय फिर जान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रो रस लोभी पतंग राम नाम जपर दे माहे नानक पासे तीकर जाहे जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया ता जम मान लियो मन मोलो राम नाम हृदय मैं तोल लाद खेप संत संचाल अवरत्याग बिख्या जंजाल धन धन कै सब कोई मुख उजलर दर गै सोए वपार विरला वपार है नानक तक है सत बलिहार है।

तसे बुझाए नानका जसो वैसो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्राह्मण मैं राख मन की तू प्री त्याग तस्ते पर नहीं किश कोए सर्वनंत्रिक को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक मन एह नाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई होग अर्ण पर जाखा नित्र पोर तिसका मंत्र न जाने होर अनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व सोख सुनिए कर था ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपिस्तर ग्रस्त मैं भोगी त्याहे त्याहे भगत है सुख पाया नानक तिस पुरखा के अंत ना पाया जाकी लीला की मत ना है सकदे वारे अब गाहे पिता का जन्म के जाने पूत सकल समरोई अपने सूता समत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्यावै से ते गुण में जाको ब्रह्माए जन मरे फिर आवै जाए ऊच नीच तिसकै स्थान जैसा जन आवै तैसा नानक ज्ञान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख रेख रंग नाना बिदकीनो विस्तार

आई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान करना आओ नाम के तारे सगले जनते हो नाम के तारे खंड ब्रह्मांड हो नाम के तारे सिमृत वेद प्राण नाम के

मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन व्यक्त दृश्य जनकम जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जमी पुरख प्रधान जिस मन बसै जोत नियाल तक निरत नावत काल अमर पै अमर पद पाया सा संग नान करते आया श्लोक।

तुम्हार नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाम

रांगन रांगों सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो। भगत करो हर के गुण गावो आठ पहर अपना खसम पे आवो

पकड़ो उठ भगती लगा, उठ भगती लगा यार वे प्रिय हबे सखियां मुंह कहीं ना देहियां यार वे हिक टू एक चाड़े फों।